0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: लोक चाँचरी
3: लोक चाँचरी
4: उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाँचरी
2: लोक चाँचरी

उज्यालो रेडियो नेटवर्क DHTTFM स्टेशन वो अनलाइन पाखे हलिङ्गको छकोलम प्रसारण जचुङ स्थित चिताइया नेपाबुखे प्राविधिक भाषा संघर्ष विष्टलिसे जी कुमार रंजितिया जोजलपा भारत सरकार बोना सत्तारूढ राष्ट्र उपाय नाय रवि लामिछाने सुन्न निम्ति भ्रमणै मन्टेन सरकार मसुदालसा प्रवक्ता थौभे कथा उनी चङ्गाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति थप सङ्घ सहकारी क्यासा मिसन नापित बेला यला जिल्ला अदालत मितिरी सहकारी ठेवा हिनामिनाई पकड्ने ज्योति गुरुङ नामे नि छन् या सूचना पिकाल पालिका या जनप्रतिनिधि वो कर्मचारी तेदी विवाद समाधान या त मन्त्रालय उच्च स्तरीय समिति देखल भारत सरकार बनाए सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाय रवि लामिछाने सुन्य निम्ति मेगुवाले दक्षिणी जलखला दिए भारतीय भ्रमण मन्टेङदो वैगु जेठ 18 सोमबार हुनु भारतीय राजधानी नु दिल्ली हुने टेम रामी लामिछाने यत्रो औपचारिक भ्रमण जीगु धागुदो थुखा नेपाल ओ भारत पृथ्वी सीमा विवाद ओ कूटनीतिक तनाव तचुङले लामिछाने भ्रमण जीटेङको खसा उक्यातकया निगुलिङ पक्ष औपचारिक घोषणा मयानी नेपाल सरकार लामिछाने भ्रमण यतकया औपचारिक रूपमा मस्युदागो चुनाव सोभे निवय बहुमत चिकथम बहुमत हगु रासोपा बालेन्द्र साय नेतृत्व सरकार देख्यो नेपाल भारत स्वापु यतकया चिउता भारत भ्रमण यथे चर्चा जचाउँदो प्रधानमन्त्री साय दिल्ली भ्रमण आतको अनिश्चित यतिनी थैजोले नु दिल्ली भनी त्यो लामिछाने भारत भ्रमण यतकया भारतीय मिडिया तस्को च्युता कैचुङदो भ्रमण यचोले लामिछाने भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर विदेश सचिव विक्रम मिश्री यसै उच्च अधिकारी पिन नाप्लाईको खण्डो लामिछाने भ्रमण भारतीय विदेश सचिव मिश्री यही भ्रमण स्थगित जुगु ओ सीमा विवाद त चौगीले जुट्याउनु ख सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेल लामिछाने भारत भ्रमणले प्रधानमन्त्री सहाय सुस्वापु मधु धागुदो मेघालय मन्त्री परिषद मुजली पावेक नाय थगुयो कथन भारत वन्टेङ धागुदो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति थप सोङ्गु सहकारी क्यासा कयत अपनी ना पितब्युगुदो

खेत की मूली है हरा पता उड़ती फिरती उड़ती फिरती अफवाह तेरा जागरा हो या

करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला चश्मा चचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू।

0: aşık, en güvene.
1: देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, सारी दुनिया मेरे गाने सुनेगी, हर जगह मेरे होर्डिंग्स लगेंगे,
2: फिर तो तू मुझे भूल जाएगा ना?
1: कभी नहीं, तेरा और मेरा साथ सदियों तक का है।
2: प्रॉमिस।